एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्दन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण त्याही है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे विभागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो आओ जो साम दे दीवाना विच नेता प्रति लड़ीवार विचार चल रही है ओ विचार आपां सांझी कर सकीए। अज जेठ महीने की आरंभता भी है उस महीने की विचार भी आपां करांगे। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस शब्द की विचार चल रही है वो शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया आसा राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 414 415 उत्ते सुशोभित है। पहले पदे की विचार आपा कर रहे सी गावे हैं गीते चीत अनीते। कुछ लोग दिखावे वास्ते परमात्मा दी भजन बंदगी दे गीत गाउंदे ने दिखावे मात्र

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है जिह डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाउ निध आवे ताहे सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बन के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सुवासां सांग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटाल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पहदे सदा

जग बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

साध सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरो मर्म न जाना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। सलोक आद गुराए नमः, जुगाद गुराए नमः, सतगुराए नमः, श्री गुरुदेवाए नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। सिमराओ जास बेस्वंभर एका,

किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एका दर्शतुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसा प्रभ के सिमरन दुख जम नसाए प्रभ के सिमरन काल पर हर प्रभ के सिमरन दुश्मन ठर प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंधन जागे प्रभ के सिमरन भाव न व्याप प्रभ के सिमरन दुख न संताप

बताके दुर्गंध है मेरे बिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बेहाय मेघ बना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रेथे सब काम जो कृपन के निरार धाम धन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रबीन बाहर भेख ना काहू भीन अभिरुभ देश आप ना कर आपत जापत जन्मा मर सिकंद्र बसे निरंकार तिसकी सीख तराय संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया अपे माने अपे आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियानम सगल तेरा सबक जाने आत्म की राहत जिस भावत सिलय लड़दाए थान तनंतर रया समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तो ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सेमृत परमगत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याहे सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तबर लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सोई जे मनाठ पहर ताका जस गावी जय

आगे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रगा जैसे तर भरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी का नाय अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च उच्चा मन अपने सबते नीचा।

ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी।

प्रीत निरंजन दर्स पार्थ रूप न पेखा नेत्र सादगी टहल सत्संग हेत करना सुने गाँव की निंदा सबते जाने आप सुख मंदा गुरु प्रसाद भिखिया प्रहर मन की बासना मनते टर इंद्रिय जित पंच दोखते रहत नानकूट मदे गुआसा अपरस वैष्णो सो जिस

तारे सर्व रूप का अवगत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत के ना पाइय धर्म नानक तस्मै जस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तस नदरी आया दाद संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गे प्रवान अपने दास को आप कृपा करत दास को सब सूझी पराय सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हित

रे सर्व पावे सगले प्रतारे अनग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार अनग जतन करे आत्म नहीं दरबार हर दुर्गे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब उसको सुख नाही कोए जबे जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेह चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरप्रसाद नानक हों छुटै सहज घटे लक उड़तावे तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनग भोग विख्या के करै न तृपतावै खब खब मरै बिना संतोख नहीं गौ राजै सुभन मनोरथ ब्रेथे सब गाजै नाम रंग सर्व सुख होए पटभागी किसे प्राप्त होए करण करामन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करामन करणे हास कियात कहां विचार जैसी दृष्टि करे तैसा हो आपे आप आप रब सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हूं का संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नानक सदी रह समाये आप देसा समझे आप आपे रचया सबके साथ आप किनू अपन विस्तार सब का उसका वो करने हा उसते भिन्न कहो किशोए धान धनंतर एक का सोए अपने चलता आप करने हार कवता करे रंग आभार मन में आमन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गना बखयानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किन्ना बरला चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटगण सुनी सरबन बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार राष्ट्रपति संत के दुखन यार जा कटा है संत के दुखन जमते नहीं छुटा है संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मतोए मलिन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरै संत कै दुखन दे मुख पवै संतन गै दुखन काग जो लवै संतन गै दुखन सर्व जोन पाए संत गै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन गै दुखन तृष्णा में जलै संत गै दुखन सब को शलै संत गै दुखन ते सब जाए संत गै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ताऊ को राहे नानक संत पावे ता वही विगत पाहे संत का नंदक मात ताई संत का नंदक ढिगन पाई संत का नंदक मात हारा संत का नंद संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज तेहीन संत का नंदक दुखिया अरदीन संत के नंदक को सर्व रोग संत के नंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भाव है तो उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी कौ सब त्यागे संत का दुखी मह अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन में मरे संत की दुख ना सुख दे डराए संत के दुखी को नाई ठाऊ नानक संत भावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटा है संत का दुखी किते काज न पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान भरमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किशना है आपन भी जा पे ही खाहे संत के दुखी को बरना रखन हार नानक संत भावता लय उबार संत का दुखी एवं बिल लाए जो जल भी होण मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र ने त्रप है संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुखी सद मिथ्या गहत कीर्तनंदका धुरी पया नानक जो तस भाव सोई थिया संत के दुखी संत का दुखी बिगड़ो पे जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना तृष्टा कोय जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोहे नानक जाने सच्चा सोहे सब घट तिसके ओ करने हार सदा सदा तुसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो सास गिरास
ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਗੋ ਥੀਆ ਬਿਨਾ ਖੇ ਲਾਭ ਕਰਨੇ ਹਰ ਦਸ ਦੂਸਰ ਕੌਮ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ

जलमथा। बटभागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तलवंत करी संसार। मंथन मुख बोले अर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एक एक, एक बशादे इत तुकियो सोजी जान। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन निरंजन जानिया। गुरप्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै। सा संग हर हर जस गहत, सर्व रोग ते हर चंद्र तन तिन कीर्तन केवल बखियान। ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा।

बलहार पूर्ण पूरा दयाल सब उपरवद कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रव व्याप प्रतपाले जीवन पापा जो जो रचो सुत से त्यात जिस भाव तिसलै मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लागा हरे के राय तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक सेवा बने आई हो गंभूज परम पद पाए से प्रणही बिचार जाके मन बसया निरंकार बंधन दूर भय निर्भय रंदन पूजे गुर के पैरे लोग सुखिये पर लोग सुवेले नानक हर पर व्यापे मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण गा यहा सुभावा आठ पैर पर पेखो रेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन मदे सिर दे बसाव मन इच्छे नानक फल पाव हालत पल तो लियो सवार राम नाम अंतर उद्वार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मंदे भाव जाए सच वापार करो वापारी दरगे निभ खेब तुम्हारी का टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर गाँव गो जाए परे राखन हार त्याय नर भाव जपे सगल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभ राखे तिस नाई दुख नाम जबत मनो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिजन को कोय ना पहुँचनार सिर पर ठाडा गुर सूरा नानकता के कार्य पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल तागे निकट न आवत काल अमर भय अमरापद पाया सा संग नानक हरते आया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपति संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समयगरी एक सघाट माहे अनक रंग अनक रंग नाना दृष्टा है नाव निध अमृत प्रभु का नाम देहि में सका विश्राम सुन समाध अनत नाद कहना जाई आचार्य विस्माद तेन देखिया से आव दिखाए नानत जन सो जी पाए सुवंतर सो बाहर अनंत घटघट व्याप रहया भगवंत तरनवाय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पाणी बह संद्र माहे चार गुण दिशे समाहे

अष्टपदे पूरे गुरका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरह अर्तन के पर लिहो पंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंगवार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गा जाय प्रगटे गोपाल महान के माथे नानक उदरे तन के साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सा संगलैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक नबी खे हमारी प्रभु की उसत करो संत मीत सावधान गागर जीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्वशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उज पाया स्थान बौर न होवे आमन जान हर तन खाट चले संजन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध्य सगल दे उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जप मन गोए सब जुग मै ताकीत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट प्राद सा संग मिटै संत कृपाते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रपाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा

कह ना सकत केह। अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजय कोड इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय।

आद है, अजय है, आजाद है, जन्म है, वर्ण है, भूत है, पर्ण है, गंज है, पांज है, चूज है, झंझ है, अमीक है, रफीक है, तंद है, बंद है, निर्बूज है, सूझ है।

स्वरूप भंगं विभूते प्रमाथ प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे

गुरु सुनाया। पवित्र होए से जना जिनी हर ध्याया, हर ध्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी ध्याया। पवित्र माता पिता कुटाम सहत सिंह, पवित्र संगत सुबाइया। कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से, पवित्र जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। करमी सहज ना उपजय, विण सहजे सहसा न जाए। नह जाए सहसा किते संजम रह कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर सिओ रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय, इह सहसा बिजाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय, इह सहसा इब जाए। जियो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो ता मैले। तिनी जन्म जुए हारिया, इह तिसना वड्डा रोग लगा। मरन मन हो विसारिया,

रत्न आपे जिसन दे बुझाए। कहे नानक शब्द रत्न है हीरा जित जड़ाओ। शिव सगत आप उपाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख

0: जी फते। गुरु प्यारी साध संगत जी साहिबां दी रहमत होई है आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब फ्री माउंट तो सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई गुरमेल सिंह जी श्री दरबार साहिब वाले समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श मुख भाग की कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन सत्कारयोग ज्ञानी अगंत सिंह जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है कि जो अपने कोल सत्कारयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह लुधियाने वाले 18 मई तो लैके 22 मई तकर जो कथा की हाजरी भरन वास्ते आ रहे हैं शाम नूं 8 बजे तो लैके 9 बजे तकर भाई साहब जी कथा आप संगतां नूं श्रवण करवाया करनगे। सब संगतां ने समय सिर पहुंच के लाहा लेना जी। अते जून 1984 का एक कलू करा दिवस मनाउंदिया होया शहीदां नूं याद करदिया होया साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दे शहीदी पुरब मनाउंदिया होया जो हर साल संगतां वल्लों नगर कीर्तन हुंदे हन सान फ्रांसिस्को विखे। सो दिन शनिचरवार 6 जून नूं इस वारी हो रहे हन। सब संगतां ने शहीदां नूं याद करदिया उत्थे वध तों वध हाजरी लवाउणी जी। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰੌਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੇਵੜ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

सुख भोगवे। हर सिमरत बिनसई सब दुख राकोट जन्म के कल विकनासई। सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा। दर्शन भेटत त्रि भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध। काम तिन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व ना दुख। टोडी महला पंजमा हर हर चंद्र जय उर तारे। सिमर स्वामी।

सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहू नेत्रों डीठी राव तै गीत नाद अकारे संगा उआ संत करे हर रंगा तै मरने जीवन सोग निहरका साच नाम की अमृत वरखा गुज कथा ए गुणते जानी नानक बोले हर हर बाणी सुही मैला पंजवा गुज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सुही मैला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे पेट संग।

पुत्र तुम्हें बसारे सम सगल समग्री सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राणदारे तुम्ही पेक पेक मन बिगसारे राव अनेक जोन परम ब्रह्म ब्रह्मारे उठ गई अब साध सिंगारे अगम अगोचर अलख पारे नानक सिमरे दिन रह।

जाके सिमरन कछ पौने पंजवा गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अतारी रहाओ सासंग सफल मूर्त दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अधारी राव सासंग जन्म मरण निवारी।

अपमानी स्वाद बार ईरक मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख बंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरणाया सुही महला पंजवा पेखत चाकत कई अत गंदा।

प्रसाद वसे मन माही जन्म जन्म के किलबिक जाए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संत रवाला सुही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा ए बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुरु प्रसाद किने

साध संग तेरे भय सागर, साध संग तरे भय सागर, हर हर नाम सिमर तनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग शोक सब विनसे, गुरपुरे मेर पाप तजाइन राव, जीवन पद भी हर को नाव, मन तन निर्मल साध सुहाव, आठ पैर पार्वती आइये, पूर्व लिखत हो।

राम रसायन अंधन माते बाँ पकड़ प्रभु आपे काटे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभु कृपा तारे नानक दास हर सरण तुम्हारे सुई मैला पंजवा संत प्रसाद ने चल घर पाया सर्व सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर हर गुरु त्याए हर चर

अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ने देवे दूतर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ने दीजे किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सुही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए किती काम ने तवल हर जित हर विसराए राव आनंद गरीबी सा संग जित प्रभ चित आए जल जाओ ए बड़पना माया लपटाए पीसन पीस उड़कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज न किते काज जित न तृप्ताए नगन प्रत रंग एक के ओसो बापाए पाट पटंबर बृतिया जय रच लो पाए सब किछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास।

छोड़ जाए जो सगल कऊ फिर लपटाऊ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनते साध संग समाओ राग सुई मैला।

जित छूटै संतो सागर पार उतरियै जी को बचन कमावै संतन का सो गुरु प्रसादी तरियै रहाव कोट तीर्थ मज्जन इस नाना इस कल में मैल परिजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै बीद कतीब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिस की निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरे सो कल मैं कट कट नानक मांझा सोही महला पंजमा जो किछ करे सोई

सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुरबान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरै द्वारे आया नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही महला पंजमा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए दयाल होवै जिस ऊपर करतै सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगै सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाव चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत वचन हृदय उरतारी तौ किरपा ते संग पाई अंतर की गद तुद पै सारी तुद जीवड़ अवर न कोई जिसनु लाए लहे सो लागै भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो इक दाना साहिब तुठे पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर

आओ। प्रभु के श्रवण गर्भ ना बसाय, प्रभु के श्रवण दुख जम न सहाय, प्रभु के श्रवण काल पर हराय, प्रभु के श्रवण दुष्मन टराय, प्रभु सिमर कर विघन न लागै, प्रभु के श्रवण आंदिन जागै, प्रभु के श्रवण पौ ना व्यापै, प्रभु के श्रवण दुख ना संतापै, प्रभु के श्रवण साधक संग श्रवण धन निखर रंग, प्रभु के श्रवण रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु के श्रवण ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के श्रवण जप तप पूजा, प्रभु के श्रवण बिनसै दूजा, प्रभु के श्रवण तीर्थ सुनाने, प्रभु के श्रवण दरगाह मानी, प्रभु के श्रवण होय सो भला, प्रभु के श्रवण सुफल फला

नाम बुद्ध जाय प्रभु कसम साहब कच सुज जाय प्रभु कसम ना है जम त्रासा प्रभु कसरण पूर्ण आशा प्रभु कसरण मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाये प्रभु जी बस असाध की रस

प्रभु को सुमरा से सुखवासी प्रभु को सुमरा सदा विनाशी सुमरनते लागे जने आप दयाल नानक जन के मगेर वाला प्रभु को सुमरा से परोपकारी प्रभु को सुमरा तन सदबलिहारी प्रभु को सुमरा से मुख सुहावै प्रभु को सुमरा तन सुख बिहावै प्रभु को सुमरा तन आत्म देता प्रभु को सुमरा तन निर्मल रीता प्रभु को सुमरा तन आनंद कनेरे प्रभु को सुमरा बस हरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे पाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबहु ना चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन साय समाने प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल बिगासन

पदे। जय मातृता सुतमित न पाए मनुहा नाम तेरा संग सहाय। जय मा प्यांदो जम दलाय चय केवल नाम संग तेरा चलाय। जय मुस्कुल होवे अत पारी हर को नाम खिन मायो धारी। अनक पुन चन करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरय। गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप सुख नेरे। सकल सुज को राजा दुखियार का नाम जप थोए सुखिया। ला करो रे बंद न पर हर का नाम जब सुने सरय। अन कुमार रंग तिख न बजावे हर का नाम जब त्याग आवय। जय मार गे जाते अकेला तय हर नाम संग हो तो सोहे। ला नाम सदा त्याय नानक गुरु परम गत पाइय। छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जब तय पार पराही। अन भगन जाय आय संगारे हर का नाम तत्काल उदार। अनक जौन जन्म मर जाम नाम जोत पाप है विश्राम। हो मेला मन कबु न तो वैर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाये साध कै संग। जय मर के कने जाय न को सार का नाम हुआ संग तोसा। जय पेड़ में अंध गुबारा हर का नाम संग जया राजम पंथरा को नाम।

चतुर्भुज जन हर रस रहते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का पग प्रकट नई छपै हर के भक्त मुक्त बोकर रहना जन संकेत तरे पार जाते और को नाम काम तिन हर हर गुण गाम सबते उत्तम की कथा नाम सुरंदर दुख लथा नाम की महिमा संत दिवस संत प्रताप ध्रुव सब नशा संत का संगठ पा की पाई

जाप ताप ज्ञान सब त्यान खाट साफ सर सुमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरया अनेक प्रकार के अभव जतना पुन दान हमें बरतना श्री घटाय हमें कर रहा थे वर्तने करें बहु

बहुत स्याणम जमका पव्यापन जतन कर त्रिशन ना थ्राप फेखने गगन नहीं भुज कोट पव दरगा ने सिज छोट सुनायो प्यार मो व्याप माया जाल अवर कर तो सगले जमडान।

भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जब दो जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ देखो मांगे, साजन की सेवा लागे, देखो अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। देखो अपनी शोभा लो रह, सत्संग हो मैं छोरा, देखो जन मन ते डरा, साजन की सरणी पर, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानी तंखे बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संज्ञा का मिटे अभिमान, आप को जो जाने नीचा, सो गणिय सबते ऊंचा। जाका मन हो सगल के रीना, हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना।

निमान को प्रवतेरो मान शुक्ल कटा को देव दान कनक नाम नहार स्वामी शुक्ल कटा के अंतर्दामी।

कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत्म लहरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी।

लास अपनी अमान कच बार सावले अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीता पी खोए बोरस का विश्वास न हो वाय जिसके बस साके राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसे जोगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक

देह प्रसाद सत्यमाय राख मर माय देह प्रसाद सुगत परम गत पाव है। देह प्रसाद बसा सुख मंदिर सत्याय सदा मन अंदर देह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ बैर समरो तुरसना दे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याग त्या मंजो दे प्रसाद पाठ पटंबर अडाम सत्या कथा वर लुभावें।

देह प्रसाद रहता तरम सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर के मन पावे नानक पर सत्य कर जाव है। देह प्रसाद रव कंचन दे लिवला ससराम सुने देह प्रसाद रव लरत मन सु पावे हार हार जस कहत। जय प्रसाद रसगुल सुदृढ़ ठाकुर मन सरणी प्रठाकर प्रभु ठाकुर।

स्वर्गुन गाओ प्रभु कृपाते हो प्रगाल प्रभु दयाते कौन बेगाल प्रभु सौ प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम हो सर्व धन प्रभु तेरी मैं आपका चुना के नया जत जत लाभ तत लगे हर नाव नानी किन के चुना सलोक हाँ

सोग्यान सार्ग संग बोधे प्रवनेरा सा संग सबोतन मेरा सार्ग संग पाय नाम रतन सार्ग संगे को पर जतन साध के मैं मरण कौन परानी नानक सा के सो ब्रह्मा समानी सा के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुलाए साध के संगा वह बस पंचा सा संग मृतरास पंचा सा संग सब के रहन सा के संग मनोहर बैन सा के संग नकत ताव सा संग सतमन पावे

बृहस्पति ब्रह्म ज्ञानी सुधाधर लय जैसे जल में कमलयालय ब्रह्म ज्ञानी सुधाधर दो जैसे सूर्य सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी के दुस्तमान जैसे राज रंग को लागत तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी के तेज देख जो वसुदा को खो देखो चंदन लय ब्रह्म ज्ञानी का योग नाव नानक जो पाव का स्वय स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनोप्रगा जैसे तरुपरे का ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय विमान ब्रह्म ज्ञानी उचे उचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानी जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के रे ना तमरा ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञान कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर से ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एको परा ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी सुमा ब्रह्म ज्ञानी पर्व करो महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी रहता उत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के ओ सुपला

ब्रह्म ज्ञानी सदा सजाग ब्रह्म ज्ञानी हो बनते आगत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुसै निवास नानी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का व्यचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी कर प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बुढ़ भाग्य पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानी ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर

ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी के गल ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानी ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब शरीर का करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रकव दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का ना, ब्रह्म ज्ञानी का सब पर, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी के स्वभाव।

मिथ्याला ही रसना पर समन में प्रेन्द्र अंजन दर्द पत्र रूप ने पे कह नेत्र साध के टैल संसंग हेत करना सुने काव की निंदा सब तेजान है आपस को मंदा गुर प्रताप क्या पर हरे मन के वासना मन ते डर इंद्रिय जत पंडो तेरे अतनान कोड में देखो ऐसा पर सुबह सुनो सो जिस पर सो प्रसान बिशन की माया ते हो पैन कर्म कर तो है न कर्म तो सुबह सुनो

आवे। वेद प्राण सिमरत बुद्धि मूर्ति कम जन स्थल चवर्ण को दे उपदेश नानक स्पंद को सदा यादेश।

सर्वरो काव कद नाम कल्याण रो मंगल गुण गाम काव जगत के देना पाई अतरम नान तस्मिल जिस लिखा तुर कर्म जिसके मन पाल ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत राम दास।

तत् लगना नान करते के जाने करता रचना। कई कोड सरजत जोगी कई कोड राज रस भोगी कई कोड पंकज द्रुप पाए कई कोड पाथर बिरख निप जाए कई कोड पण पाणी बसुंदर कई कोड दसपो मंडल कई कोड ससियर सुर नखत्र कई कोड देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समगरी अपने सुतारे नानक जस जस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोड राज तम सत कई कोड वेद पुराण सिमरतर शास्त्र कई कोट किया रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किया जर दिवे कई कोट ग्रीमर स्वर्ण दिवे कई कोट दक्षिण नरपेशा कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगा सबते नेरा सब दूर नानक आप लवत्रया परपुर कई कोट पतार के वासी कई कोट नरसुर निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट ब जोनी फिराए कई कोड बैठा देखा है कई कोड काले थक पाए कई कोड किए तनमंद कई कोड माया में चंद जय जय पाणा ते ते रख नानक सब किछ प्रभ कै हाथ कई कोड पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागे कई कोड प्रभ को जनते आत्म पार ब्रह्म लांते।

मानक ते क्या आवे ज्योति पावे सोई करावे इसके आत सब कुचले ज्योति पावे सोई करे अन जानत वे क्या मेरा चे जे जानत आपन आप बचाए परमे भुला दसतावे ने मैं चार कुंड परे आवे कर कृपा जिसे अपने भक्त दे ना नित्य जन ना मिले खिन में नीच कीट को राय पार ब्रह्म ग्रीव निवाज जहाँ काल दिस कछु न आवे तत्काल दर्द प्रगटावे जहाँ को

कबो उच नीच में बसे कबो सोग हर करांगा स कबो निंद व्यवहार कबो बकास पायाल कबो बेता ब्रह्मचार नानिका मिलाव नहर कबो नृत करे भोपाल कबो सोए रहे दिन रात कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व के उत्तरवाल कबो होए भय बट राजा कबो बेकारी नीच का साजा कबो आपके रत में आवे कबो भला भला कहावे जो प्रभु राखे तिहि रहै।

जिसके अंतर रात हनुमान स्व नर्क पति हुआ सुहान देव जन में जो बनवन सोद विष्टा का जनता विस्को कर्म का वह जन्म रे वो जो परमावे पांच तन पुम का जो करे कुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कर बा जिसके हृदय गरीब व्यवसाय नानी क्या मुता के सुख पावे तन मंतावे कर कर भावे तन स्मान कर संग न जावे बोल उस कर्मान को पर करे आस पर विचरता का हो विनाश सबते आव जाने बलवंत खिन में जाय पसुमंद के सेना बल दया पंकारी तरम राय तुझ करे कुआरे गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिरसारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्र वह हर दरगह को कस्य गवे आपस को जो पला का आवे तिज बलाय निक नावे सिर्फ किरण जाका मनोय कव नाना नानक ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझे कथ हो तब उसको सुख नाय को जब जाने मैं अग्त करता तब रह गर्व जन में फिरता जब तारे को बैरी मेत तब लने चलना ही चेत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सुजाए

संग दुख दे सब जाए संग दुख नीचन चाहे सं दुख कथा को नाहे नान सं पावे तो पिगत पाए संग निंदक मात ताए संग निंदक खन टेकन ना पाई

Sandhikananda dokhame dokha nana sandhapaveta azkapya mokha sandhikadokhi sadapaveta sandhikadokhi kisai ka nai metta sandhikadokhi ko dan laga sandhikadokhi ko sabtyaga sandhikadokhi mahankari sandhikadokhi sadapikari sandhikadokhi janame maraya sandhikadokhi nasukh tetaraya sandhikadokhi ko nahi thao nana sandhapaveta le milaye संगत दुखी अद्वितीय टूटा है संगत दुखी के तय काजना पहुंचे संगत दुखी को ध्यान परमाया संगत दुखी उजड़ पाया है संगत दुखी अंतर तेथो था जन साल बिना मृतक किलो था संगत दुखी के जड़ कितना है अपन विद्या पे खा है संगत दुखी को नरकनार नान संभावे तले उबार संगत दुखी अम्बरलाए जो जल बिन मछली तरपड़ाए संगत दुखी बखाने राजा जो पाप के दन नहीं त्रापाए संगत दुखी जुटे अकेला जो बुआर तिल खेत माए दोहेला संगत दुखी धर्म ते रहत संगत दुखी स्वामी थे आकत कीर्तन का तुरी पया नान ज्योत पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संगत दुखी को दरका मिले सुधाए संगत दुखी सुधा सकाइए संगत दुखी ना मरे ना जीवाइए

हम कियो सुध करो दिन रात तिसत आव सागिरा स सब कुछ वर्त जिसका किया जा सगर तसको थी अपना खेला करने हार दूसर कौन कहे बिचारे।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जय सत सतया अपने कारण में आप समाया सोदत सोद सोद सिद्धिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सो या सतोल ने कि जन्म ने कि मरे अपन चलता पी करे आंजाम दृष्ट अंदृष्टि तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रहता प्रताप अविनाशी नायक खान तार ब्रह्मांड लाख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरे तन मंत प्रभु के सेव सगल दान प्रभु के सेव दुख विचारण आपे मेले कृपाल गुरु का सजा पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसन कृपा करे बड़ भागे नाम जगत पावे विश्राम नाने तिन पुर कोतम कर मान जो कुछ करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बस हर संग सह सभायो वह सोए करने हर पछाण सोए प्रभ क्या गया जन मिट लगाना जैसा सत सदिष्टाना जिस

रेमन मेरे सदार्द आप अपन सी प्रव्याप आप अपन किया के चुनावे जसो प्राणी रुचा कोय तिरनाय तेरा किस काम गत नान के कर नाम रूपवंत नाय मोह है प्रभु जो सगल घट सो है धनवंता।

कर कर भजत को नाम दिया नानक सो जन निर्मलती आ जाके मन गुर की परतीत तिजन आवे हर प्रभचित भगत भगत सुनिय तोये जाके हृदय को सत्करणी सहता की रहत सत हृदय सत मुख क्या है तो साचित

ब्रह्मास्पदि अविनाशी ब्रह्म मेर आकमान केतु प्रेत आगत से परे नायत को सर्व निरंतर को सोए अपे विनय अपे दान गैर गंभीर गैर सुदाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल भक्त संसार तरे किधर नहीं पाओ नानक के मन अंदराओ मन सापूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होगा हरण परंदा का नेत्र और तुझका मंत्र न जाने और आनंद रूप मंगल सजा के सर्व सौ सुने करता के राज में

गाता जिसके सिर सो करने हार अवन बुझ करते विचार करते किमित न जाने कि अनान ज्योतिष पावे सो वर्ती आ विस्मन विस्म पै समय जन बुझ जाते साया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लाए है ओए दाते दो काटन हार जा के संग तरह संसार जन का सेव सो बड़ पागे जन के संग एकले बिलागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे सलोक

आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी सब सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जब सुनता भोजन अर्क सत सब हो नान सत सत प्रभ सोए सत सुरु जन मान्या कनक राम त्रमूल पचान्या जा कह हृदय स्वा प्रभाया तद ज्ञान तस्मान प्रगटाया पैतंद्र पोहे बसाना जित जत समाय समाना बस माय ले बस गाई तं गोविंद न कहना जाय बुझे बुझनार बबे नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा।

अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेव के सर पर राखे, अपने दाखो देव बढ़ाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेव की आपत राखे, ताकि को न राखे, प्रभु के सेव को न पहुंचे, प्रभु के सेव ऊंच तय ऊंचाई। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेव दया दिस प्रगटाया, निक गिरी में कद राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका साधन काटता उतना को राख देख रहा, मानस जतन करत भो भारत के कर्तव्य जात।

अपने नाने जस प्रसाद है सब रोज अपने रस पावे जिन को अमृत पीवे अमृत सो इस पुर का नाय कदे बिना सो जा के मन पक्ता गुंता सो

संत जनामिर करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर स्वामी अवर उपाप सभी विचार चन कमर दमायर उतारो कर्ण कर्ण सो पर समर्थ दृढ़ कर गो नाम हर वाथ योतन संतो भगवान संजना का निर्मल मंतो एकास रखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुण रुटता वे सो तन अर्थ वाते पावे प्रवान मन प्रबोध हर के नाता बैठाए ता को विघ्न लागे कोय जा हर सोए

ने पूर्ण पुरुष ने डोला ने सुप्र प्रेम प्रेम सुरंग उपदेता अवसार कै संग पर शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश अंध लाग बड़पागी जपे प्रभ सोये नानक नाम रत सुखो सेवक मनसा पूरी पे सगुर तेंद्र मन मत लाई।

बृहस्पति आप कथे आप सुनने हारो अपेका विस्तार जंतु पावत सचो पाए अपने पाने ले समाए तुम ते बनने के चोए अपने सो सब जगत पर होए जा को प्रभु जी आप जाए सच नाम सोए जन पाए सो सुंदर चेतन का बेता नान सकल सिद्ध का देता दिजंतर सवता के आ दीन दयाल नाथ को ना दूसरा के तो कोई न मारे सो मुआ जिस मन विचारे तिस्त जवर का को जाए सब सुरेख निरंजन।

संत संगंतर पड़ीटा ना प्रभु का लागा मिठा सगल समग्री एक कटुमा रंगना न दुष्टाए नौ नितंबर प्रभु का नाम दे हिमेश का विश्राम स्वर्ण समाधान तेन के न जय चल विस्मातन दिखा जी साव दिखाए नान तेजन सोजी पाए सोअंतर सो बार अनंत कर व्याप्रया भगवंता।

ध्यान सिमरत में देख सचे सुर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोल सर्व कराकर खेला खेल मोल न पाया गुणा मोल सर्व ज्योत में जाके ज्योतार स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का ना स्नान कितन में विश्वास संजना का पे खंसा ब्रह्म संजना के हृदय सब तरम

सफल जीवन सफलता का संग कमल गार रंग जय जय शब्द नाद वाज सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगट गोपाल।

संरचना कहते कर प्रसाद प्रवतारी नानक ने बेखे पुमारी प्रभ के उत करो सन्मित सावधानी का सुख मनी से गोविंद गुरु नाम जसवन बसे सोत निदान

0: कोट पाथर बिरखने बजाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर,
1: सगल समग्री अपने सूत तारे,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शासत,
1: कई कोट

0: जिसका साथ न काटत आप
1: ताको रखत कर हाथ
0: मानस जतन करत बहुपात
1: जिसके कर्तव्य मिर्थे जात
0: मारे न रखे अवर न कोए
1: सर जिया का रखा सोए
0: काहे सोच कर हरे प्राणी
1: जप नानक प्रभ अलख बडानी
0: बारंबार बार प्रभ जपिए
1: अमृत ए मन तन त्रपिए
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
1: अवर नाही छाया
0: नाम धन नामो रूप रंग
1: नाम सोकर नाम का संग
0: नाम रस जो जन त्रिपताने
1: मन तन नामे नाम समाने
0: उठत बैठ

0: पाई।
1: आनक भगत बंधन नित कर है,
0: चरण कमल हृदय सिमर है।
1: साद बलिहारी साद गुर अपने,
0: नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने।
1: यह हर रस पावे जन कोई,
0: अमृत पीवे।

0: किसको गनी।
1: जब एक हर अगम अपार
0: तब नरक सुर को कौन अवतार।
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
0: तब सिंह सकत को होके चढ़ाए।
1: जब आपे आप अपनी जोत तर
0: कवन निर कवन कत डरे।
1: आपन चलत आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार।
1: अब नासी सुख आपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास को किस होए।
1: जब अविगत अगोचर प्रभ एक जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे।
1: आपन आप ही अचर्जा
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा।
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत्र

0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: सांझना सुने सुब बचन
0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत
0: सत बचन साधु

दीश मलिहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: इतनी की सेवा प्रवान करनी हुई अपना दी खेमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री गौर दा परिवार शब्द कायम करेंगे। वाहिगुरु जी का सा वाहिगुरु जी की फतेह।